सुना है लोगों से, खाटू वाले श्याम जी बुरी से बुरी मुसीबत से भी निकाल सकते हैं। आ रहा हूं मैं भी बाबा, अब आप ही हैं जो मुझे संभाल सकते हैं।

अपने लहू में बसा लिया जिसने मेरे श्री राम को, ऐसी भक्ति ना देखी कहीं। नमन भक्त हनुमान को, नमन भक्त हनुमान को।

महाराज, तो कैसा लगा आपको गाना? मैं शिव का हूँ सिम मेरे, उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय शंकर, जय महाराज, टेक केयर।

0: 96.6 पे रेडियो डीएस
1: शहर का नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6।
2: दोस्तों आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों हमारे स्टूडियो के नंबर आप लिख लें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों नंबर एक बार पुनः लिखें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप हमें तुरंत कॉल कीजिए।
1: शहर का नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6। रेडियो डीएस जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
2: लेडीज एंड जेंटलमैन, आर यू रेडी?
3: गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्ते।

0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: गुड मॉर्निंग मैम।
0: गुड मॉर्निंग सर, नाम क्या है आपका?
1: मैम मेरा नाम है ये सलमानी।
0: कहाँ से बात कर रहे सर?
1: सिटी से मैम।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
1: आज गाना सुनना चाहते हैं, देखे कई चेहरे जहाँ में मगर एक तेरे चेहरे पर प्यार आया।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए। दोस्तों वक्त हो चुका है 10:04 का। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 34 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों हमारी स्टूडियो कॉलिंग लाइन चालू है, आप कॉल करें और अपनी फरमाइशों को दर्ज कराएं 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: आपका
1: नाम देव कुमार,
0: कहाँ से बात कर रहे हो सर?
1: मैं जिला महेंद्रगढ़ गांव सहबादपुर से बात कर रहा हूँ, हरियाणा से।
0: हाँ जी सर, कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: बड़े महात्मा के हम तुम एक कमरे में बंद हो।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश। करेगा ना रेडी डी एफ में कॉल करने के लिए।

0: सर नमस्ते, सर नाम क्या है आपका?
1: नाम तुलसीराम मीना, ग्राम पीलू खेड़ा से।
0: सर कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: टपका रे टपका एक और टपका।
0: वो कैसा सुना रहे आपकी फरमाइश पर ये गाना? रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद मेरी बहन।
0: यू वेलकम।

0: हेलो
1: सर, नमस्ते।
0: गुड मॉर्निंग पायल दीदी।
1: गुड मॉर्निंग सर, नाम क्या है आपका?
0: चौधरी निवेदन कर रहा हूँ आवे जी।
1: फिर कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: आज तो कई दिन में फोन नहीं लगे।
1: हाँ सर, कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: गाना तो बढ़िया लाए हैं।
1: हाँ जी बताइए।
0: छुक छुक रेल चली है जीवन की।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

वक्त हो चुका है 10:17 का। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 34 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों हमारी स्टूडियो कॉलिंग लाइन चालू है, आप कॉल करें, अपनी फरमाइशों को दर्ज कराएं, हम आपकी फरमाइशों को पूरा करेंगे जल्दी ही। दोस्तों हमारी स्टूडियो कॉलिंग नंबर है 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों दोबारा प्रयास करें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5 पर कॉल कर अपनी फरमाइशों को दर्ज करा, हम आपकी फरमाइशों को जल्दी ही पूरा करेंगे। 89.6 रेडियो डीएस।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: हेलो,
1: नाम क्या है आपका?
0: आरबी गुजर।
1: कहाँ से बात कर रहे?
0: गंगापुर से। और गाने के बोल है किस्मत बदलती देखी।
1: ओके सर, मैम सुना रहे हैं आपकी फरमाइश कर रहे हैं। हेलो।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: आरती विजय।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: गंगापुर से।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
0: स्कूल छूट गया।
1: कौन सा?
0: स्कूल छूट गया, बर्फी हो गया।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश करेगा।

0: चंद्रपुर।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
0: कोई सा भी चला दो बॉलीवुड पार्टी सॉन्ग।
1: कौन सा सर?
0: पार्टी सॉन्ग चला दो बॉलीवुड।
1: ओके सर, सुना रही आपको फरमाइश करेगा।

0: हेलो। हाँ जी, नाम क्या है आपका? कहाँ से बात कर रहे? हरिद्वार। कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: एक खटोला जेल कविता, एक खटोला जेल कविता।
2: ये नहीं निकलता 10-12 साल।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस।
2: हेलो,
3: गुड मॉर्निंग।
2: गुड मॉर्निंग सर, नाम क्या है आपका?
3: मैंने जम्मू से केशव शर्मा ही।
2: सर कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
3: अरे आज गाना सुना तो मुझे, फिल्म है कागज की नाव का गाना है ना, हर जन्म में हमारा मिलन।
2: आज जन्म है हमारा मिलन।
3: हाँ कागज की नाव है फिल्म ये।
2: ओके सर,
3: हर जन्म में।

0: हेलो
1: मैम, गुड मॉर्निंग।
0: गुड मॉर्निंग सर, नाम क्या है?
1: मेरा नाम अक्षता, मैं गंगा से बात कर रहा हूँ।
0: सर कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: जी गाना है खोखे, अमित सैनी का गाना है खोखे।
0: कौन सा सर?
1: खोखे खोखे
0: खोखे।
1: हाँ
0: खोखे सर सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर। ये गाना रेडियो बहुत बहुत धन्यवाद।

0: गुलशन।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: गंगापुर सिटी।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
0: चर छैया छैया सॉन्ग।
1: ओके मैम, सुना रही।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: गौरव।
1: कहाँ से बात कर रहे?
0: मैं क्या बोला नहीं, गंगापुर से।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
0: सिद्धू मूसे वाला लगा दो, 205।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश। पर

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6। रेडियो DS, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
2: सच्चा वाला प्यार।
3: हेलो
2: हेलो,
3: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
2: आशा सैनी।
3: कहाँ से बात कर रहे हो?
2: जंगापुर सिटी।
3: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
2: सच्चा वाला प्यार।
3: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: हेलो
1: हेलो, नमस्ते।
0: सर नमस्ते सर, नाम क्या है आपका?
1: रोहित।
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: आदर्श नगर।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
1: बेवफा बेवफा बेवफा निकली है तू।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश करिए।

0: सर नमस्ते।
1: नमस्ते दीदी, कैसी हैं आप?
0: ठीक है, आप कैसे हो?
1: हम भी ठीक है। आपको मैंने 2-3 दिन बाद कॉल लगाया, मैंने कहा बारिश नहीं है, बहुत तेज धूप है।
0: धूप है क्या? गर्मी पड़ रही है, इधर भी धूप है, इधर भी बारिश का मौसम नहीं है सर गंगापुर में।
1: जी मॉनसून अभी उधर साउथ में है ना अभी?
0: हाँ जी। हाँ सर,
1: हाँ जब मैं आगरा उत्तर प्रदेश से राजू दवानिया बोल रहा हूँ दीदी।
0: जी कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
1: दीदी फिल्म का नाम है सौतन और गाने के बोल हैं जिंदगी प्यार का गीत है, लता जी की आवाज।
0: हाँ जी ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर। ये गाना रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत धन्यवाद।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है।
2: हेलो
3: हेलो।
2: हाँ जी सर, नाम क्या है आपका?
3: हाँ सर, हम जागा बहन जी।
2: कहाँ से बात कर रहे हो?
3: गंगापुर सिटी अम्बेडकर धर्मशाला के पास से।
2: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
3: मेरे किरदार।
2: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: कौन सा वो कैसा सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना?
1: कान टूटे बंदे रवे मित्रां की ये।

दोस्तों वक्त हो चुका है 11:13 का। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 36 डिग्री सेल्सियस और आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम हेलो फरमाइश 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: नाम क्या है आपका?
1: मेरी बहन का नाम है किसी।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?

0: सर लेडीज की आवाज कम करो, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे समझ में। कहाँ से बात कर रहे हो?
1: मैं नितिन बोल रही हूँ।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
1: अखियां रे जान मेरी जान।
0: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: प्रदीप, हम एक नहीं हो सकते।
1: क्यों?
0: क्योंकि घर वालों ने मेरा रिश्ता दूसरी जगह तय कर दिया है। तुम मेरे घर वालों को पसंद नहीं हो।

दोस्तों वक्त हो चुका है 11:56 का। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 36 डिग्री सेल्सियस। आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम हेलो फरमाइश 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: हेलो,
1: टीवी देखा क्या?
0: तू तो बड़ा हीरो निकला बत्रा, मान गई
1: प्रमोशन हो गया कैप्टन बन गया हूँ।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
2: हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज आस्था बंसल, स्टडिंग इन 9th क्लास। बिफोर कमिंग इन डीएस आई डिडंट नो अबाउट फाउंडेशन। नाउ आई नो दैट व्हाट इज रियल फाउंडेशन। The faculty of DS is very experienced and supportive, and study material is designed straight to the point in quality. Regular doubt classes enhances our concept building for better future and selection in higher exams like JEE and NEET. Let's study with us for better career building.
0: Radio DS, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS।

दोस्तों मिलते हैं। दोस्तों वक्त हो चुका है 12:30 का। इस वक्त आप मेरे साथ ऑन करें 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस और आपने अभी मेरे साथ सुन रहे थे हेलो फरमाइश कार्यक्रम। दोस्तों मिलते हैं 1 बजे नए 93 कार्यक्रम के साथ 89.6 रेडियो डीएस।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6। रेडियो DS जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

0: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।
1: गुड आफ्टरनून दोस्तों, वक्त हो चुका है एक बज चुके हैं। इस वक्त आप मेरे साथ ऑन कर 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरी साथ सुने थे कार्यक्रम हेलो फरमाइश। थोड़ी ही देर में आप सुनोगे आपका मनपसंद कार्यक्रम नए तराने। दोस्तों नए तरानों के बीचों में कुछ वार्तालाप करेंगे।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का दड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डीएस साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। दिल से दिल तक।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
2: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 एफएम। मैं रूबी सोनी आज आपसे चर्चा करने वाली हूँ विवाह पंजीकरण के प्रमुख कानून पर। भारत में विवाह का पंजीकरण मुख्य दो रूप से अधिनियम के तहत किया जाता है। पहला हिंदू मैरिज एक्ट 1955। यह कानून उन सभी लोगों पर लागू होते हैं जो हिंदू, जैन, सिख या बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। इसके तहत शादी संपन्न होने के बाद पंजीकरण किया जा सकता है। और दूसरा अधिनियम है हमारा मैरिज एक्ट 1954। यह धर्मनिरपेक्ष कानून है जो भारत के किसी भी नागरिक पर लागू होता है, चाहे उसका धर्म कुछ भी हो। इसके तहत शादी से पहले रजिस्टर को 30 दिन का नोटिस देना अनिवार्य होता है। इसके कुछ अनिवार्य नियम हैं। पहला नियम है सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अनुसार भारत में सभी धर्मों के विवाह का पंजीकरण अनिवार्य है। आयु सीमा, विवाह के समय लड़के की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और लड़की की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। उसके बाद हम चर्चा करते हैं राजस्थान में अनिवार्य विवाह पंजीकरण अधिनियम। राजस्थान में विवाह अधिकार पंजीकरण अधिनियम 2009 से लागू हुआ है। इसके लिए विवाह के 30 दिन के भीतर पंजीकरण कराने पर मात्र केवल 10 रुपए शुल्क लगता है, और अगर पंजीकरण आपने 30 दिन के बाद कराया है तो आपको 100 रुपए का शुल्क देना पड़ता है। आप अपने स्थानीय उप पंजीकरण कार्यालय या फिर ई मित्र के पास जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है कि अगर हम पंजीकरण कराएं तो उसके लिए हमें क्या क्या दस्तावेज चाहिए। तो उसके लिए हमें कुछ ज्यादा नहीं, केवल हमारा आयु प्रमाण पत्र जो जन्म के आधार पर हो सकता है। अगर वो नहीं है तो हम 10th की मार्कशीट का यूज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा दस्तावेज है निवास का प्रमाण पत्र, यानी मूल निवास प्रमाण पत्र। ये आपका आधार कार्ड भी हो सकता है, वोटर आईडी हो सकता है। अगर ये भी आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप बिजली या पानी का बिल भी लगा सकते हैं। उसके बाद विवाह के प्रमाण, विवाह के प्रमाण के लिए आपको जो शादी की तस्वीरें होती हैं उसका यूज कर सकते हो। मंदिर या फिर मैरिज हॉल का प्रमाण पत्र भी लगा सकते हो। उसके अलावा आपको दो गवाह जिन्होंने शादी देखी हो उनके पास पहचान पत्र और निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। धन्यवाद।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो DS 89.6 गंगापुर सिटी का गड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो DS के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है DS साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। दिल से दिल तक।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
2: सभी डीएस प्रेमियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं रूबी सोनी फ्रॉम गंगापुर सिटी आज आपसे तलाक के बाद महिलाओं को मिलने वाले कानूनी अधिकार इस पर चर्चा करेंगी। दोस्तों, तलाक के बाद महिला की पहली आवश्यकता मेंटेनेंस की होती है, उसकी जरूरतों की होती है कि उसको मेंटेनेंस कैसा मिलेगा, कहाँ से मिलेगा। तलाक के दौरान और बाद में महिला अपने पति से गुजारा भत्ता दो तरीके से ले सकती है, या तो वो चाहे तो अपनी पूरी राशि एक मुश्त ले सकती है या फिर मंथली ले सकती है, उसको दोनों तरह से हक पाने का अधिकार है। दूसरी बात कि ये राशि कितनी मिलनी चाहिए, तो ये राशि उसको जितनी पति की आय है उसके आधार पर अदालत तय करती है कि उसको मेंटेनेंस कितना मिलना चाहिए। तीसरी बात आती है कि महिला अगर वर्किंग वूमेन है तो उसको मेंटेनेंस मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो जी हाँ, उसको पति से मेंटेनेंस पाने का, अगर वो वर्किंग वूमेन है तब भी अधिकार प्राप्त है और नहीं है तब भी अधिकार प्राप्त है, वो अदालत से भरण पोषण की मांग कर सकती है। दूसरी बात आती है हमारी बच्चों की कस्टडी की, कि बच्चों की कस्टडी किसके पास रहेगी। तलाक के बाद जो महिला, अगर महिला का बच्चा 5 साल से छोटा है तो वो ऑब्वियसली अपनी माँ के पास रहेगा, और उससे बड़ा है तो कस्टडी माँ को भी मिल सकती है और पिता को भी मिल सकती है। यदि कस्टडी पिता को मिलती है तो माँ को उसको मिलने का पूरा पूरा अधिकार है, माँ जब चाहे अपने बच्चे से मिल सकती है। तीसरी बात आती है स्त्री धन की, कि शादी में महिला को मिले उपहार जेवर जो कुछ भी मिला है उस पर केवल उसी महिला का अधिकार है, ना उसके ससुराल वाले ना उसके पति उसके धन पर कोई दावा कर सकते हैं, उस पर केवल और केवल उसी का पूर्ण रूप से अधिकार रहता है। अगली बात आती है साझा घर में रहने का अधिकार, मतलब जो महिला है तलाकशुदा महिला है जब तक उसको तलाक नहीं मिल जाता वो पूरी तरीके से उस घर में ससुराल में रहने की पूरी तरह हकदार है, उसे किसी भी तरह से उसका पति या उसके ससुराल वाले उसको घर से बाहर नहीं निकाल सकते। अगली बात आती है पैतृक संपत्ति की, अगर तलाकशुदा महिला अपने माता पिता के साथ रहती है तो उसको अपने माता पिता की संपत्ति में पूरा पूरा अधिकार रहता है। अगली बात आती है कि अगर किसी महिला के पास वकील करने के लिए या फिर तलाक का फैसला कुछ भी करने के लिए पैसे नहीं हैं, तो उसको सरकार की तरफ से मुफ्त बिल्कुल कानूनी सहायता दी जाएगी और वकील भी उसके लिए मुफ्त प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन वो इस बात का ध्यान रखे कि ऐसा वकील चुने कि जो उसकी पारिवारिक वकील में मदद कर सके, मतलब जो उसका थोड़ा फैमिलियर होना चाहिए, ऐसे वकील का सहारा ले तो बहुत बेटर रहेगा। धन्यवाद।

gentlemen, this is your captain speaking. आज की फ्लाइट में आप सबका स्वागत है. हमारा क्रू आपका बहुत ख्याल रखेगा, लेकिन आपसे एक निवेदन है कि अपनी चोली टाइटली बांध लें ताकि दिल बाहर ना गिर जाए.

वक्त हो चुका है 1:42 का। दोस्तों, गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस और आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम नहीं तरह 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6। रेडियो डीएस जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

वक्त हो चुका है दो बज चुके। इस वक्त आप मेरे साथ टोन कर 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त अरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 38 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों भी आपने थोड़ी देर पहले मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम नहे तराने। अब थोड़ी ही देर में आप सुनोगे कार्यक्रम भुली विसरी यादें 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
2: DS Science Academy, where your dreams turn into reality. 12th Board Science 2026, शानदार नतीजे। टॉपर मानस शर्मा 98% अंक हासिल कर पूरे क्षेत्र में छाया। हमारी सफलता की मिसाल 95% से अधिक 19 विद्यार्थी, 90% से अधिक 110 विद्यार्थी, 85% से अधिक 251 विद्यार्थी, 80% से अधिक 407 विद्यार्थी। हमारे चमकते सितारे 95% प्लस वाले आरजू जरेड़ा, यशांसी सिंगल, अदिति मीना, अश्विनी दोई, सोनम मीना, शुभम मीना, खुशी गर्ग, आकाश कुमार मीना, प्रियांशु कावर और इसके अलावा भी बहुत सारे छात्र। एग्जाम कोई भी हो, DS के विद्यार्थी हमेशा अनबीटेबल रहते हैं। अब तुम्हारी बारी है अपनी सफलता की नई कहानी लिखने की। एडमिशन ओपन सेशन 2026-27 क्लास 9, 10, 11, 12 विद साइंस स्ट्रीम। DS साइंस एकेडमी, FCI गोडाउन रोड, गंगापुर सिटी, नियर सैनिक नगर एन नसिया कॉलोनी। संपर्क करें 8005598377, इसके अलावा 9983413111।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
3: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी।
4: ये DS साइंस एकेडमी के मार्गदर्शन में चलता है और कक्षा 1 से 8 या इससे आगे तक शिक्षा प्रदान करता है। मजबूत शैक्षणिक वातावरण के साथ अनुशासन और नैतिक मूल्यों पर जोर, स्मार्ट और गुणवत्ता वाली शिक्षा व्यवस्था, प्रशिक्षित अध्यापक, अलग अलग सुसज्जित लैबोरेटरीज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब आदि, सर्वांगीण विकास के लिए अतिरिक्त गतिविधियाँ, संगीत, नृत्य, चित्रकला, खेल सुविधाएं और शारीरिक विकास पर ध्यान, सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण, स्कूल बस वाहन की व्यवस्था, पुस्तकीय ज्ञान के साथ व्यावहारिक ज्ञान पर विशेष फोकस। ये को एजुकेशनल है और बच्चों के मजेदार तरीके से सीखने, लर्निंग थ्रू फन पर जोर देता है। वर्तमान में एडमिशन ओपन है। स्कूल का पता,
3: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल,
4: कर्मचारी कॉलोनी, सैनिक नगर क्षेत्र, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, राजस्थान। ये DS साइंस एकेडमी के मार्गदर्शन में चलता है।
1: रेडियो DS जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

दोस्तों वक्त हो चुका है 3:00 इस वक्त आप मेरे साथ टोन करें 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 38 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम भूली विसरी यादें, अब थोड़ी ही देर में आप सुनोगे कार्यक्रम बैक टू वेग गाने का 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो DS।
2: नसरीन मोहन चाचा के भांजी है, बचपन से ही अंधी है बेचारी।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी

दोस्तों वक्त हो चुका है 3:47 का। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 38 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों हमारी स्टूडियो कॉलिंग लाइन चालू है, आप कॉल करें, अपनी फरमाइशों को दर्ज कराएं, हम आपकी फरमाइशों को जल्दी ही पूरा करेंगे। दोस्तों हमारी स्टूडियो कॉलिंग नंबर है 6378024475 पर कॉल करें, अपनी फरमाइशों को दर्ज कराएं 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS,
2: शहर का नया मैजिक रेडियो DS 89.6।
3: दोस्तों आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो DS गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों हमारे स्टूडियो के नंबर आप लिख लें 6।

0: दोस्तों नंबर एक बार पुनः लिखें, 6-3-7-8-0-2-4-4-7-5। दोस्तों इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप हमें तुरंत कॉल कीजिए।
1: शहर का नया मैजिक रेडियो
2: नमस्ते दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स आपके बच्चों के लिए आसान और मजेदार बन जाए? कक्षा 7वीं से 10वीं तक के बच्चों के लिए फाउंडेशन और स्टेट बोर्ड के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में, तो डीएस साइंस एकेडमी आपकी सही मंजिल है। यहाँ मिलता है स्मार्ट टीचिंग मेथड, कॉन्सेप्ट बेस्ड टीचिंग, एक्सपीरियंस्ड और डेडिकेटेड फैकल्टी, रेगुलर पेरेंट्स अपडेट, मोटिवेशनल गाइडेंस, वीकली टेस्ट, परफॉर्मेंस एनालिसिस, डाउट सॉल्विंग सेशंस, बोर्ड एग्जाम और कॉम्पिटिटिव लेवल की पूरी तैयारी और हॉस्टल सुविधा भी उपलब्ध। हमारा लक्ष्य सिर्फ मार्क्स बढ़ाना नहीं बल्कि बच्चों की मजबूत नींव बनाना है। स्मॉल बैचेस में बेहतर ध्यान और व्यक्तिगत देखभाल। आज ही ज्वाइन इन करें और अपनी साइंस करियर की स्ट्रॉन्ग शुरुआत करें। कॉन्टैक्ट नाउ डीएस साइंस एकेडमी 8302-611149 या 9413-163-680। डीएस साइंस एकेडमी, कॉन्सेप्ट क्लियर, फ्यूचर ब्राइट।
3: डीएस साइंस एकेडमी, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, कक्षा 10th परीक्षा, परिणाम 2026। हमारे स्टार परफॉर्मर्स, 99% से अधिक एक विद्यार्थी, 98% से अधिक 7 विद्यार्थी, 97% से अधिक 28 विद्यार्थी, 96% से अधिक 53 विद्यार्थी, 95% से अधिक 76 विद्यार्थी, 90% से अधिक 252 विद्यार्थी। अब आपकी बारी है 10th बोर्ड 2027 में 95% प्लस स्कोर का सपना अब हकीकत बनेगा। डीएस साइंस एकेडमी में दाखिला ले और बने टॉपर बैच 2027 का हिस्सा। हम क्या देते हैं? AIIT JEE 6 से 12 तक फाउंडेशन एंड बोर्ड, RBSE and CBSE, experienced faculty, smart classrooms and latest study material, synonym of success. Admission open for session 2026-27, limited seats.
4: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।

गुड इवनिंग दोस्तों। दोस्तों वक्त हो चुका है 4 बज चुके हैं। इस वक्त आप मेरे साथ टून कर 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम बैक टू बैक गाने का। अब थोड़ी ही देर में आप सुनोगे आपका मनपसंद कार्यक्रम राजस्थानी 89.6 रेडियो डीएस पर। दोस्तों हमारी स्टूडियो कॉलिंग लाइन चालू है, आप कॉल कर अपनी फरमाइशों को दर्ज कराए 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6। रेडियो डीएस जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
2: लेडीज एंड जेंटलमैन, आर यू रेडी?
3: डीएस साइंस एकेडमी, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, कक्षा 10th परीक्षा परिणाम 2026। हमारे स्टार परफॉर्मर्स 99% से अधिक, एक विद्यार्थी 98% से अधिक, 7 विद्यार्थी 97% से अधिक, 28 विद्यार्थी 96% से अधिक, 53 विद्यार्थी 95% से अधिक, 76 विद्यार्थी 90% से अधिक, 252 विद्यार्थी। अब आपकी बारी है 10th बोर्ड 2027 में 95% प्लस स्कोर का सपना अब हकीकत बनेगा। डीएस साइंस एकेडमी में दाखिला ले और बने टॉपर बैच 2027 का हिस्सा। हम क्या देते हैं? AIIT JEE 6 से 12 तक फाउंडेशन एंड बोर्ड, RBSE एंड CBSE, एक्सपीरियंस फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम्स एंड लेटेस्ट स्टडी मटेरियल, सिनोनिम ऑफ सक्सेस। एडमिशन ओपन फॉर सेशन 2026-27, लिमिटेड सीट्स।
4: दोस्तों वक्त हो चुका है 4:29 का और दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 38 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों अभी आपने हमारे साथ सुने थे कार्यक्रम राजस्थानी, अब थोड़ी ही देर में सुनोगे आपका मनपसंद कार्यक्रम हेलो फरमाइश। दोस्तों वक्त हो चुका है आपके मनपसंद कार्यक्रम हेलो फरमाइश 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: मैं आपका जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति श्री राधा सिटी मथुरा से वार्तालाप कर रहा हूँ। दीदी आप कैसी हैं?
1: सर मैं ठीक हूँ, और आप कैसे हो?
0: मैं बहुत अच्छा हूँ, स्वस्थ हूँ, और आपसे वार्तालाप हो जाती है बहुत अच्छा लगता है।
1: सर कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: फिल्म का नाम है पद्मावत।
1: अच्छा, जाने के बोल।
0: घूमे घूमर घूमर भाई साहब।
1: ओके सर, सुना रहे आपकी फरमाइश पर ये गाना रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी हृदय धन्यवाद, आभार। आपका दिन मंगलमय हो। नमस्कार।

0: हेलो,
1: गुड इवनिंग बहन जी।
0: गुड इवनिंग सर, नाम क्या है आपका?
1: नाम तुलसीराम मीना, ग्राम पीलूखेड़ा से।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
1: फिल्म का नाम है नागिन, तेरे इश्क का मुझ पे हुआ ये असर है।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना। रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद मेरी बहन।

0: हेलो,
1: गंगापुर सिटी सर।
0: नाम क्या है आपका?
1: वंदना।
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: गंगापुर सिटी से।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
1: दिल दिया गल्ला।
0: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: दीदी राधे राधे।
1: दीदी राधे राधे, नाम क्या है आपका?
0: मेरा नाम समता जादव ना। दीदी आप कैसी हो?
1: दीदी बहुत दिनों में याद कराया आपने तो।
0: क्या करूं दीदी, तो फिर नहीं लगा पाई फोन ऑन।
1: मैं यही सोच रही मैंने कि या तो छुट्टियों में मम्मी के घर, क्योंकि इस टाइम छुट्टी चल रही है ना।
0: हाँ दीदी, मम्मी के यहाँ पे तो घूम आए हम।
1: अच्छा घूम आए?
0: हाँ शादी थी जब ही गए थे और अब तो यहाँ पे आ गए हम।
1: मैंने सोचा कि भाई छुट्टी चल रही है, गर्मियों के बच्चों को लेके गए उनके घूमने।
0: वही तो।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगी दीदी?
0: गाना है हुई आग नम और दिल मुस्कुराया, साथी कोई भूला याद आया।
1: ओके सर सुना। ओके मैम सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर।
0: थैंक यू दीदी।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: राज।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: क्या,
1: कहाँ से बात कर रहे हो सर?
0: सवाई माधोपुर।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: हम जाट गेले आ रही थी।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश करिएगा ना।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
2: हेलो सर नमस्ते।
3: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
2: सौरभ मीना।
3: कहाँ से बात कर रहे हो?
2: गंगापुर से।
3: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
2: पिया पिया।
3: ओके मैम, सुना रहे हैं आप मरवाइस पर।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: सनी।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: सिटी।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
0: चला गया।
1: ओके, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश।

0: आनंद आप मुगल चला
1: सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पता है आपका
2: हीरू
1: कहाँ से बात कर रहे हो
2: निमोदा स्टेशन
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर
2: डेढ़ सौ बजाओ सवाल
1: वो तो सुना रहे हैं आपकी फरमाइश

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज।
2: हेलो,
3: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
2: और मीना।
3: कहाँ से बात कर रहे सर?
2: गंगापुर सिटी।
3: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
2: द लास्ट राइड।
3: ओके से सुना रहे हैं, आपकी फरमाइश पर है।
4: Yo, what's up? It's the most hella baby. You just arrived live on the scene of... Tell me your phone, man. Like

0: हेलो, हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: लोकेश मीणा।
0: कहाँ से बात कर रहे
1: हैं? गंगापुर सिटी से।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
1: लाल परी।
0: ओके, तो सुना रही आपकी फरमाइश पर गाना।
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
3: यहाँ शहर का नया मैजिक रेडियो DS 89.6।
4: दोस्तों, आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो DS गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों, हमारे स्टूडियो के नंबर आप लिख लें।

0: शो नंबर एक बार पुनः लिखें, 6।
1: नमस्ते दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स आपके बच्चों के लिए आसान और मजेदार बन जाए? कक्षा 7वीं से 10वीं तक के बच्चों के लिए फाउंडेशन और स्टेट बोर्ड के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में, तो डीएस साइंस एकेडमी आपकी सही मंजिल है। यहाँ मिलता है स्मार्ट टीचिंग मेथड, कॉन्सेप्ट बेस्ड टीचिंग, एक्सपीरियंस्ड और डेडिकेटेड फैकल्टी, रेगुलर पेरेंट्स अपडेट, मोटिवेशनल गाइडेंस, वीकली टेस्ट, परफॉर्मेंस एनालिसिस, डाउट सॉल्विंग सेशंस, बोर्ड एग्जाम और कॉम्पिटिटिव लेवल की पूरी तैयारी और हॉस्टल सुविधा भी उपलब्ध। हमारा लक्ष्य सिर्फ मार्क्स बढ़ाना नहीं, बल्कि बच्चों की मजबूत नींव बनाना है। स्मॉल बैचेस में बेहतर ध्यान और

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS।
2: DS साइंस एकेडमी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान कक्षा 10th परीक्षा परिणाम 2026। हमारे स्टार परफॉर्मर्स 99% से अधिक एक विद्यार्थी, 98% से अधिक 7 विद्यार्थी, 97% से अधिक 28 विद्यार्थी, 96% से अधिक 53 विद्यार्थी, 95% से अधिक 76 विद्यार्थी, 90% से अधिक 252 विद्यार्थी। अब आपकी बारी है 10th बोर्ड 2027 में 95% प्लस स्कोर।
3: हेलो।
4: हेलो,
3: हाँ जी, नाम क्या है आपका? कहाँ से बात कर रहे हो?
4: जन्ना फतेहती जी।
3: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
4: जिंदगी एक दुआ है।
3: कौन सा?

0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।
1: जो भी लोग ये कहते हैं ना कि हमें एक्सरसाइज करने के लिए टाइम नहीं मिलता, उनके लिए एक अच्छा सोल्यूशन लेकर आई हूँ आज मैं। मैं हूँ आरजे खुशी। कैसे हैं आप लोग? तो बहुत सारे जने ये बोलते हैं कि वजन तो घटाना है लेकिन एक्सरसाइज नहीं की जाती, इतना सारा वक्त ही नहीं मिलता। देखिए, अगर वक्त कोई प्रॉब्लम है ना तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हमें एक घंटा ही तो एक साथ नहीं मिलता है, लेकिन सोचिए क्या हम दिन में 3 बार 10-10 मिनट का वक्त निकाल सकते हैं? अगर उन 10-10 मिनट में हम अपनी एक्सरसाइज को डिवाइड कर दें, यानी कि एक साथ में एक घंटा एक्सरसाइज ना करके दिन में 3 बार 10-10 मिनट की अगर एक्सरसाइज करें तो भी हमारी हेल्थ पे उतना ही असर पड़ेगा जितना एक घंटे की सीधी एक्सरसाइज में पड़ेगा। तो अब नो बहाना है ना। मैं हूँ आरजे खुशी, लौट कर आती हूँ
0: 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: शहर का नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6।
1: सर्दियों में बाजरे की खिचड़ी मुझे इतनी पसंद है और खास तौर पे राबड़ी भी। मैं हूँ आरजे खुशी। सर्दियों में बाजरे की रोटी, बाजरे की खिचड़ी इतनी अमेजिंग लगती है, और अगर छत पे बैठे हो, वरांडे में बैठे हो, हल्की हल्की धूप आ रही हो और कुछ बढ़िया सा खाना हो तो मजे आ जाते हैं। आपको बताना चाहूंगी कि इस सीजन में यानी कि विंटर्स में यानी कि सर्दियों में अगर आप आंवले का अचार खाते हैं ना तो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। मुझे पता है कि आपको आंवला बहुत पसंद है, और ये आंवला केवल टेस्ट के लिए नहीं आपकी हेल्थ के लिए भी ओवरऑल बहुत अच्छा है। इससे इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, यानी कि आप जल्दी जल्दी बीमार नहीं पड़ते, और जो भी बीमारियां इस सीजन में आएंगी ना उनको आप इजीली फाइट कर पाएंगे, यानी कि इजीली उनके खिलाफ आपका शरीर खड़ा हो पाएगा। अब मिलेंगे कल इसी पते पर इसी समय। मैं हूँ आरजे खुशी।
2: गंगापुर स्थिति की धरती।

0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।
1: भाई सुबह के ठंड से कम और बॉस की बातों से ज्यादा परेशान है। तो चार दिन पुरानी बात है यार, मैं किसी पर्सनल रीजन से परेशान था तो बॉस कहता है आगे और केबिन में घुस गया बिना नॉक के कि यार मुझे बताओ ना, मुझसे बातें करो, मैं हल बताऊंगा, कम्युनिकेट करो, कम्युनिकेशन इज द की, जब तक बातें बताओगे नहीं सॉल्व कैसी होगी। अब आज सुबह की बात है, बॉस खुद ऑफिस लेट आया। मैंने पूछा आप आए क्यों नहीं, कहते मैं घर पे लॉक हो गया। तो मैंने कहा यार मुझे बताते, तो बॉस कहते क्या हो जाता उससे। मैंने कहा मुझसे कम्युनिकेट करते तो सोल्यूशन मिल जाता। बॉस कहते यार तुम चाबी कैसे ढूंढते। अरे बॉस कम्युनिकेशन इज द की, पर आप कहीं मत जाओ। बैक टू बैक आपके लिए मैं 5 गाने प्ले करने वाला हूँ ओनली ऑन 89.6 रेडियो डीएस।
2: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।

0: गंगापुर सिटी की धरकर रेडियो डीएस।
1: हाँ, थोड़े थोड़े लेफ्ट आगे पीछे, अरे अरे अरे अरे, अरे ट्यून इन कर रखा आपने 89.6 रेडियो डीएस। और इस वक्त अगर कार चलाते हुए आपने आगे वाले या बाजू वाले, दाएं वाले, पीछे वाले, किसी भी कार वाले इंसान को आपने गंदे गंदे हाथों से इशारे अगर किए हो, तो शुक्र मनाओ कि आप हिंदुस्तान में हो और जिम्बाब्वे में नहीं, क्योंकि जिम्बाब्वे में रूल्स है, अगर आप गाड़ी चलाते हुए किसी भी आसपास वाले गाड़ी के ड्राइवर या सड़क पे भी खड़े इंसान को गंदे इशारे करोगे हाथों से, तो आपको जेल हो सकता है। शुक्र मनाओ कि आप हिंदुस्तान में हो और इस वक्त ट्यून इन कर रखा आपने रेडियो डीएस 89.6, क्योंकि कुछ अमेजिंग बैक टू बैक गाने आपके लिए।

0: सिटी के घर पर रेडियो डीएस, रेडियो डीएस, रेडियो डीएस।
1: ट्यून इन कर रखा है अपने 89.6 रेडियो डीएस और कहीं जू में नहीं हो आप, लेकिन लेकिन लेकिन आज का शो यही तक था। लेकिन जाने से पहले एक बढ़िया फैक्ट मेरे हाथ लगा है। क्रो यानी कि जो कौवे होते हैं वो इंसानों के चेहरे याद रखते हैं। और एक और खास बात यह है कि अगर उनके मन में कोई ग्रज है यानी हमारे खिलाफ शिकायत है कुछ भी, तो वो सारी चीजें भी याद रखते हैं। यानी कल ऑफिस जाओगे और बॉस को पुराने ग्रजेस याद रहे तो वो आपका बॉस नहीं, वो है। स्टे ट्यून्ड टू 89.6।

0: मैजिक रेडियो DS 89.6
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS।

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: गंगापुर सिटी की धड़कन
2: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे।

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: यहाँ बीच में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: कर
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे।

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे।

0: मैजिक रेडियो डी एस 89.6
1: यहाँ बीच में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डी एस।

0: मैजिक रेडियो डी एस 89.6
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डी एस।

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे।

0: मैजिक रेडियो DS 89.6
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे।

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: गंगापुर सिटी की धरती।
2: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे।

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे।

0: हर बीट में है शहर का कमाल। DS 89.6 शहर की धुन।
1: 89.6 DSFM पे मैं तनिषा आपके साथ। वक्त तो चला है आपके फेवरेट सेगमेंट सफरनामे का। हिंदुस्तानी सिनेमा में अनेक अभिनेत्रियों ने अपनी भावपूर्ण अदाकारी से खास पहचान बनाई है, लेकिन ट्रेजेडी क्वीन सिर्फ और सिर्फ मीना कुमारी कहलाई। दर्द की देवी को गुजरे हुए कई साल हो गए हैं, पर सिने प्रेमियों के जहन में वो आज भी जिंदा है। 89.6 DSFM पे मैं तनिषा आपके साथ।
0: हर बीट में है शहर का कमाल। DS 89.6 शहर की धुन।

0: हर बीट में है शहर का कमाल। DS 89.6 शहर की धुन।
1: 89.6 DSFM पे मैं तनिषा आपके साथ अब आपको सुनाने जा रही हूँ फिल्म दिल अपना और प्रीत पराई जो सन 1960 में आई थी। इस गीत में मीना कुमारी राजकुमार के साथ अपने खामोश प्रेम के खो जाने का ताना नादिरा जी को इस तरह देती है, मुबारक है तुम्हें कि तुम किसी के नूर हो गए, किसी के इतने पास हो कि सबसे दूर हो गए। गीतकार शैलेंद्र और संगीतकार शंकर जयकिशन की टीम ने इस गीत को कुछ ऐसे अंदाज में बनाया है कि आज भी पिकनिक के लिए ये पसंदीदा गीत माना जाता है। 89.6 DSFM पे मैं तनिषा आपके साथ।

0: हर बीट में है शहर का कमाल। DS 89.6 शहर की धुन।
1: सालों पुराना ये गीत दो बातों को गलत साबित करता है। पहला, मीना कुमारी अच्छा डांस नहीं कर सकती, और दूसरा, लता मंगेशकर अपनी बहन आशा की तरह मस्ती भरे गीत नहीं गा सकती। 89.6 DSFM पे आज के लिए इतना ही। फिर मिलूंगी आपसे, मैं तनीषा आपके साथ।

0: नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6।
1: सुप्रभात, नए दिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 89.6 DSFM पे मैं तनीषा आपके साथ। आप सभी ने कभी ना कभी किसी पे भरोसा तो किया होगा और टूटा भी जरूर होगा, और उसके बाद समझ नहीं आता कि कैसे किस पे भरोसा करें, कौन भरोसे लायक है या नहीं। तो भरोसा उस पर करो जो तुम्हारी ये तीन बातें समझ सके। सबसे पहली कि मुस्कुराहट के पीछे का दर्द, दूसरी गुस्से के पीछे का प्यार, और तीसरी चुप रहने की पीछे की वजह। 89.6 DSFM पे मैं तनीषा आपके साथ।
0: शहर का नया मैजिक रेडियो DS 89.6।

0: हर बीट में है शहर का कमाल. DS 89.6 शहर की धुन.
1: गिरना भी अच्छा है, औकात का पता चलता है. बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को, अपनों का पता चलता है. जिन्हें गुस्सा आता है वो लोग सच्चे होते हैं. मैंने झूठों को अक्सर मुस्कुराते हुए देखा है. सीख रही हूं मैं भी मनुष्य को पढ़ने का हुनर. सुना है चेहरे पे किताबों से ज्यादा लिखा होता है. गिरना भी अच्छा होता है.
2: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर.

0: 91.6 पे रेडियो डीएस।
1: चलिए आपको अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक कविता सुनाती हूँ। घर चाहे कैसा भी हो, उसके एक कोने में खुलकर हंसने की जगह रखना। सूरज कितना भी दूर हो, उसको घर आने का रास्ता देना। कभी कभी छत पर चढ़कर तारे अवश्य गिनना। हो सके तो हाथ बढ़ाकर चांद को छूने की कोशिश करना। अगर हो लोगों से मिलना जुलना, तो घर के पास पड़ोस जरूर रखना। भीगने देना बारिश में, उछल कूद भी करने देना। हो सके तो बच्चों को एक कागज की कश्ती जलाने देना। कभी हो फुर्सत आसमां भी साफ हो, तो एक पतंग आसमान में चढ़ाना। हो सके तो एक छोटा सा पेंच भी लड़ाना। घर के सामने रखना एक पेड़, उस पर बैठे पक्षियों की बातें अवश्य सुनना। घर चाहे कैसा भी हो, घर के कोने में खुलकर हंसने की जगह रखना।
0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: 89.6 डीएसएफएम पे मैं तनिषा आपके साथ। आंखों के बारे में एक बड़ी दिलचस्प बात कही गई है। आंखों से प्यार बरसता है तो गुस्सा भी टपकता है। आंखें लाल भी होती है और आंखों ही आंखों में इशारे भी होते हैं। तो आंखों की भी एक अपनी भाषा है। कुछ बातें सिर्फ आंखों से ही हो सकती है। फिर मिलूंगी आपसे यहीं पे, ऐसी कुछ बातें लेकर आऊंगी जो आपकी आंखों से खुशी छलकाए। 89.6 डीएसएफएम पे मैं तनिषा।
2: हर बीट में है शहर का कमाल। डीएस 89.6 शहर की धुन।

सुबह की शुरुआत अगर प्रसाद से हो तो दिन कितना अच्छा जाएगा। मैं हूँ आरजे खुशी। ये तो हम बचपन से सुनते आए हैं कि प्रसाद की बहुत महत्वता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रसाद होता क्या है? हमारे शास्त्रों से हमें पता चलता है कि प्रसाद केवल वो खाने की चीज नहीं है जो हमने भगवान को अर्पण की है। हमारा पूरा जीवन भी एक प्रसाद हो सकता है। वो हर चीज जो हम भगवान के श्री चरणों में अर्पित करते हैं वो प्रसाद बन जाती है। वो हमारी बातें हो सकती है, वो हमारा कर्म हो सकता है, वो हमारे रिश्ते हो सकते हैं, वो हमारा पूरा जीवन हो सकता है। तो सोचिए कितनी ऐसी चीजें हैं जो हम अपनी लाइफ में प्रसाद बना सकते हैं। लौटूंगी थोड़ी देर में, सुनते रहिए। मैं हूँ आरजे खुशी।

0: हर इंसान अपने आप पे काम करना चाहता है, अपने आप को और ज्यादा जानना चाहता है। मैं हूँ आरजे खुशी, और अगर आप भी अपने आप को जानना चाहते हैं ना, तो थोड़ा सा ये देखिए कि जो भी हम खा रहे हैं उसका प्रभाव हमारी मानसिकता पे क्या पड़ रहा है। हमारे शास्त्रों से हमें ये पता चलता है कि जो भी हम खा रहे हैं उसका कुछ ना कुछ प्रभाव हमारी मानसिकता पे पड़ता ही पड़ता है। अगर आप गौर करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि कौन से टाइप का खाना है जो आपको सूट कर रहा है और कौन से टाइप का खाना है जो आपको सूट नहीं कर रहा है। कई बार हम लोग ऐसी चीजें खाने लग जाते हैं जो हमारी मानसिकता खराब कर रही होती है, लेकिन क्योंकि हम ध्यान नहीं देते तो हमें पता नहीं चलता। और अगर हमने इस छोटी सी बात पे ध्यान देना शुरू कर दिया तो हमारा जीवन बहुत बेहतर हो सकता है। लौटूंगी थोड़ी देर में, मैं हूँ आरजे खुशी।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6।

गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है। गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: कहते हैं कि अगर जीवन में ऊपर वाले की सहायता चाहते हैं ना, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी की सहायता जरूर कीजिए। मैं हूँ आरजे खुशी, और सहायता का मतलब केवल यही नहीं है कि हम किसी की आर्थिक सहायता कर दें या कोई गरीब हमें मिले तो उसकी ही सहायता करें। हमारे आसपास कितने जने हैं जिनको हमारी जरूरत हो सकती है, जैसे बड़े बूढ़े लोग जिनको चलने में दिक्कत है, जिनको बैठने में दिक्कत है, अगर उनकी सहायता भी हम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम ऊपर वाले के और करीब जा रहे हैं। तो क्यों ना हम अपने आसपास ऐसे मौके ढूंढने लगे जहां हमको सहायता करने का मौका मिले। इसी सोच के साथ अभी यहां से जाती हूं, मिलूंगी कल इसी पते पर इसी समय। मैं हूं आरजे खुशी।

गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है। गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस।
1: सुप्रभात, नए दिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 89.6 डीएस एफएम पे मैं तनिषा। एक बहुत ही खूबसूरत बात आपको बताती हूँ। इंसान का जीवन एक रंगमंच है जहाँ हर एक पल हमें कई किरदार निभाने पड़ते हैं। इन किरदारों को निभाते निभाते हम थक जाते हैं और अपनी ऊर्जा को खो देते हैं, जो सफल जीवन के लिए बेहद जरूरी है। कई बार हम ऐसी परिस्थितियों का सामना करते हैं जो हमारी जिंदगी में निराशावाद भर देता है। ऐसी परिस्थितियों से बाहर निकलने के लिए प्रेरित रहना आवश्यक है, लेकिन निराशावाद एक जाल की तरह लोगों को जकड़ता है और उससे बाहर आना कठिन हो जाता है। नई शुरुआत करने के लिए प्रेरित और उत्साहित रहना बहुत महत्वपूर्ण है। 89.6 डीएस एफएम पे मैं तनिषा।
2: शहर का नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: 89.6 डीएस एफएम पे मैं तनीषा आपके साथ। हम अक्सर बहुत ही नकारात्मक सोचते हैं, तो बिना सकारात्मकता के कोई भी इंसान सफल नहीं होता है। एक प्रेरित व्यक्ति ही अपना लक्ष्य प्राप्त करता है और समाज में अंधेरे को दूर करता है। भले ही कितनी भी मुश्किल घड़ी हो, एक मोटिवेटेड इंसान ही अंधेरे में खुद रोशनी बनकर दूसरों को पथ प्रदर्शित कर सकता है। मोटिवेटेड रहने के लिए आपको सकारात्मक चीजों से घिरे रहना चाहिए और सकारात्मक विचार रखना चाहिए।
0: 89.6 पे रेडियो डीएस

0: बीट में है शहर का कमाल, DS 89.6 शहर की धुन।
1: अगर आप किसी बात से निराश हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो ये कविता आपके लिए। सच है, विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। मुंह से न कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण न गहते हैं। जो आ पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत्नित रहते हैं। बड़ खुद विपत्ति पर छाते हैं। ऐसी बातों के साथ फिर आपसे मिलूंगी 89.6 DSFM पे, मैं तनीषा।
0: हर बीट में है शहर का कमाल, DS 89.6 शहर की धुन।